चांद की दीदी तुम चले से खोलो सफर के बाद दृष्टि खोलो संत ने दुख पाए दुखी सुख पाए साथ में सुखी एक देख की तीर पहचान हट हट के पट पट की जान सरोज करत करा कर तारा कन्या करत तब तीर पारा जब तो करत करत हो तब हो तुम मैं मिलती के पर सब हो जीती बदल।

0: செம்பம் தமிழ் சாமையம் தரும்
1: कॉल कीजिए 9054567233 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।

0: ॐ स्तुतिकरं ॐ परात्पराय नमः ॐ वनमालिने नमः ॐ यज्ञरूपाय नमः ॐ चक्रपाणये नमः ॐ गदाधराय नमः ॐ कुबेराय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नमः
1: अस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य योगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता घृणीये बीजं सूर्यगुं शक्तिः।

पातित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानु मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कंठं पातु विभावसुः स्कन्ध

0: भूतः तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः ज्ञानमो सर्वा कुकुमाङ्क चतुर्भुजान् कदापाणि
1: वरकुमारेण प्रतिस्तुति कर लगे दिल का रहता ही न सिद्ध कर लगे।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए और बड़ा मौसम बहुत अच्छा है, तो आप एंजॉय कीजिएगा। अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, टीवी बढ़िया क्वालिटी का लेना है, किचन की गैजेट्स एडवांस बढ़िया क्वालिटी की, और आउटडोर फर्नीचर और बारबेक्यू चाहिए, तो आप जाइए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, फादर्स डे के लिए शॉपिंग करिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर, और फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045-799-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045। तो अब अगर आपने सोने के गहने, सोने की बार्स, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे, ब्राइडल सेट चाहिए, डिजिटल गहने चाहिए, डायमंड अप टू 70% ऑफ चाहिए, फादर्स डे के लिए गिफ्ट चाहिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टन में मौजूद है, वहाँ पे जाइए, स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। और जानकारी के लिए आप अल मदीना ज्वेलर्स को 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए 647-773-7640। और मैं पहले ही कह दूं कि अगर आप इतना अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो बहन भाई हमें मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, सुनते हैं, मैं उनका से धन्यवाद करती हूँ। तो आइए, अब जब प्यार गर्दिश में आ जाता है तो फिर इस तरह की गाने निकलती हैं।

0: प्यार करूं सबका एक बादल आवारा जन्म जन्म से हूं साथ तेरे बना हूं मेरा जल की धारा।
1: जी हाँ जी, क्या बात है, मेरा नाम जल की धारा है, प्यार कंपेयर कर लिया जल की धारा के साथ, तो आइए इसी जल की धारा के साथ बहते आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाते हैं, मनोरंजन करते हैं आपका। जी हाँ, तो जो पहले वाले गाने, पुराने वाले गाने थे उनका अंदाज अपना था, पर उनकी जो कोरियोग्राफी थी कमाल की थी, और पुरानी फिल्मों में आपको नजर आते हैं कि घर कैसे होते थे, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनके स्टाइल, लाइफस्टाइल, बहुत कुछ आपको देखने को उसमें, सिर्फ गाना ही नहीं मिलता है, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती, क्योंकि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस तो वो फैशन वाले ही कपड़े पहनती थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेके, आप तो मजा लीजिएगा। सो अगर आप मूव हो रहे हो तो आपके लिए मदद करते हैं एच के मूवर्स कनाडा भर में, और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-4567-04 एच के मूवर्स। तो अपने घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो किचनर वाटर गल्फ में आप नसीब खिंड को कॉल कीजिए 519-546-1260-519-546-1260। और न्यू इंडिया स्वीट्स है रेस्टोरेंट आपके लिए, ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है, लाइव कुकिंग करवानी है, आपने किसी तरह का भी खाना ऑर्डर करना है तो आप उनको कॉल कीजिए 905-814-1703-905-814-1730। तो अब मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में, आपके लिए लोकेटेड है, तो आपने किसी किस्म की भी, आपको लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो, आपको कोलिजन का काम करवाना है, तो आप mastercollisiondepot.com पर जा सकते हो। तो गोर रोड लंदन में उनका गैराज है, तो आप वहाँ पे जाके उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए रिची, आपके लिए बढ़िया सा आपके लिए सेवाएं देते हैं, तो आप रिची को कॉल कीजिएगा, और mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेना है, या फिर आपने किसी किस्म की भी, आपको आपने नया टीवी लेना है, किचन की गैजेट्स, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यूज, न्यू स्टाइल बारबेक्यूज, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट में मौजूद है, तो उनकी दो लोकेशन है आपके लिए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड, दूसरी लोकेशन ग्वालियर। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी फादर्स डे स्पेशल देखिए, और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिए फादर्स डे के लिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, ये ससुराल फिल्म था, महमूद के ऊपर फिल्माया गया था, तो लेट्स

रह कर भी बहुत दूर बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो हम दूर रहे, पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे।

के साथ उनकी हीरोइन बन के आती थी शोभा कोटे, तो बहुत था म्यूजिक। तो आइए इसी तरह आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनाते रहेंगे। और किसी किस्म की आपको करते हैं तो ये जो गाना है ये भी आपके लिए पुराना सा गाना है, फिर आपको नए दौर में भी ले आएंगे। तो ये जो गाना है So let's go to this beautiful song, enjoy.

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप अगर आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आपके लिए लंदन में मास्टर कोलिजन डिपो मौजूद है वो रोड पे, और वहाँ पे आप जा सकते हो और अपना कोलिजन का काम करवा सकते हो। बहुत सालों का

0: दिया ऊपर चांदनी आई कमर कमर दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल
1: तीन नहरों पर वन मेरा गरम फूल।
2: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज स्टोव वाशर लेना है, कभी भी आपको अपने घर के लिए किचनेट सेट करवानी है, आउटसाइड बारबेक्यू आउटडोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड, बढ़िया प्राइस बढ़िया क्वालिटी, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है, दूसरी लोकेशन कॉल में। और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको
3: $10,000 in Canada on things like credit cards, payday loans or lines of credit, are your money?
2: So अब आपने किसी किस्म का भी आपको आपने आपको घर खरीदना है तो आप जाइएगा, आपको मदद करेंगे खुश वासिंग ब्रांच 416-670-13-13। आपने मूविंग करनी है तो एच के मूवर्स आपके लिए तो कनाडा भर में मूव होने की मदद करते हैं, तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से मूव करवाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए और अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4416-524-6-524-6704। तो अभी तक अगर आपने अपना टैक्स नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोडे को आप कॉल कर लीजिए पर्सनल या बिजनेस 416-302-8-8-4-1-6-302-8-1-3-5। सो लेट्स गो टू दिस।

0: इश्क है आग का दरिया, तुम समझ के उतरना। जिसम हजारों तूफान आता नहीं है।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये गाना आप जरूर देखिएगा, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो महमूद शुभा खोटे को, बड़ी सुंदर है शुभा खोटे, इसमें बड़ी यंग है। तो उसको वो कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो, वो उसको ऐसे इशारे से कहता है, तो वो कहती है नहीं। फिर वो जब सिर हिलाती रहती है तो फिर वो ना ना में सिर हिलाना शुरू कर देता है, तो फिर वो हाँ हाँ में सिर हिलाना शुरू कर देती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं हाँ कर रही हूँ। तो बड़ी मजेदार पुरानी मूवीज है, बड़ा बड़ा फनी है, बहुत ही मजेदार है। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। जिनके बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं और अभी ग्रेजुएशन होनी है बच्चों की, 8th grade की और बाकी के ग्रेड की, तो उन पेरेंट्स को मैं बहुत देती हूँ। तो अब इस गाने का मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका एक बार फिर से प्रोग्राम को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। हो अपना टाइम निकालते हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब आप ये प्रोग्राम सुनते हो तो आपको बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए जाएं, ताकि आपकी रूह को के लिए फीलिंग हो और आपको अच्छा लगे। जो है आप सुनते हो तो आपको बहुत बड़ी ये गीत पेश कर रहे हैं, तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा इस गीत को। तो लेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग तो आप

0: रंग रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग। हनेरी नूं चानन दे रंगां नाल रोशनांदा पंजाब पंजाबीयत दे रंगां दी महकां नूं वंडदा रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग।
1: सुनना जरूर हर शनिवार रात 11 बजे तो 12 बजे तक 530 AM ते अपने होस्ट चमकौर सिंह दे नाल।

0: की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की,
1: यहाँ ये
0: स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA. चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर. विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर. 9057900560. स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट, ब्रैम्पटन.
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
2: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist,
2: HK Movers.
5: HK Movers.
6: Oh, ha, bhai. अब बड़ी हाईवे दे डोर पोरी होई खड़ी है, की गल
7: आ? एक्सीडेंट हो गया कार दा, टो ट्रक है, नु फोन कर लगिया.
6: ओ टो ट्रक छड, मैं सीधा करदा स्काईडोम ऑटो एंड बॉडी सेंटर वाले नु, नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउन जाना उते.
7: आहो, मैं सुनया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनियां डील कर दिया, नाल ही हुन मेरी कार दा मिशन टेस्ट करा दो, ने नवे टायर पवा दियो, उधरो ब्यूटी पार्लर जाना, उधरो कार दा पंगा. आ छेड़ी करो, स्काईडोम वाले नु फोन करो, 905-874-9878.
6: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते कार स्काई तो सोने ते सुहागे वाली गल हुंदी जे.
8: जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम पंजाबी रंग दे विच अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई तुसी आज ही संपर्क कर सकदे हो चमकौर सिंह नाल, 416-662-1313, 416-662-1313.
9: चलो AM530 ते पंजाबी रंग रेडियो प्रोग्राम नु सुन जा रहे सारे श्रोतियां दा चमकौर सिंह नु निघा स्वागत. मेरे वल्लों सारे ही भैन भरावां नु प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब. दोस्तों, इस समय जुड़ चुके हो पंजाबी रंग रेडियो प्रोग्राम के नाल, जो कि प्रोग्राम थोड़े लिए हरेक शनिचरवार की रात को 11 तो लैके 12 तक पेश किया जाता. सो थोड़ा सारा का हार्दिक स्वागत करते हैं असी. सो मैं पूरी उम्मीद है कि वीकेंड पूरा तुसी इंजॉय कर रहे होंगे, मौसम बड़ा वधिया, सेफ ड्राइव जिथे बाहर अंदर जाते हो. सो थोड़ा साडा साथ ठीक 12 तक रहेगा. साडे स्पोंसर दे संदेश, कुछ गीत संगीत भी होएगा. जिमें कि दोस्तों आप सारे ही जानते हैं कि यह जरा हफ्ता है घलूकारा, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिन्होंने आप साका नीला तारा भी कह दें, यह हफ्ता चल रहा. सो असी जिन्हें भी शहीद होए ने, सिंह सिंघणियां, दरबार साहब तो अकाल साहब के जो हमले हुए सन 1984, 42 साल हो चुके हैं उस समय की जालम सरकार ने जो हमले किए हैं. सो असी उन्होंने याद करते हैं जिहड़े शहीद होए ने शहीदां नूं, क्योंकि ये आपां नूं कदे वी नहीं भुलना अपनी जिंदगी दे विच. इन्ना चिर आपां जिउंदे आ, 42 साल हो चुके ने, कोई है नहीं कोई हिसाब किताब, किसी गौरमेंट ने नहीं कुछ किया. सो ये जो दिन आउंदे आ तां बड़ा वधिया जाने दी कि हार्ड हुंदा इस तरह का गलबात करनी, हमेशा ही याद करते हैं आपां. सो कुछ अपने गीत इस तरह के होणगे अज प्रोग्राम दे विच, हल्का फुल्का अपना संगीत रखांगे. आओ आप सारे अरदास करिए, सारे सिंह जो सिंह शहीद होए ने, बच्चे परिवारों के परिवार चले गए ने, आओ उन्होंने याद करते हुए असी उन्होंने सारे कोट कोट प्रणाम कहते हाँ. रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग साडे स्पोंसर के संदेश ने, वो भी थोड़े सांझे किए जाएंगे लाइव. सुनते तुसी रहना, तुसी भी साडे नाल सांझ पा सकते हो. नंबर ने स्टूडियो का 905-673-3337, 905-673-3337 ते थोड़ी साडी गलबात हो सकती है. तुसी सानू लोकल सुनना है फोन राही, तो नंबर है बड़ा सौखा जहा 416-477-2040, 416-477-2040, या AM530 की ऐप लोड जी आप करके तुसी ए सुन सकते हो ऐप ते भी प्रोग्राम. USA चो सुनना है तो नंबर है 641-741-0860. इस समय जो टैंपरेचर है मिसागा दे विच, पीयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नेड़े सारा स्टूडियो है, 21 डिग्री आ फील कर रहे हैं, 23 डिग्री क्लीयर स्काई दे नाल. कल जिहड़ा संडे दा टैंपरेचर होएगा वध तो वध होएगा 26 डिग्री, तो घट्ट तो घट्ट 15 डिग्री. तो नैक्सट वीक कुछ बारिश भी होएगी 2-3 दिन ट्यूजडे तो बाद. इस तरह मौसम चल रहे हैं, बाहर अंदर कितने भी जाते अपना जरूर ख्याल रख्या करो. सो आओ आप शहीदों नूं याद करते हुए जो अटैक हुए सन अकाल तख्त साहब ते ते दरबार साहब ते, कुछ थोड़े नाल ए थानू सुनाउने गीत. उस तो बाद फिर थोड़ी सेवा च हाजिर होंने। उस तो पहला एक संदेश पर पंजाब इंश्योरेंस वालों स्पोंसर किया जा रहा है RDSP जो कि रजिस्टर्ड जी डिसबिलिटी सेविंग्स प्लैन है। ध्यान सुन लो, अगर थोड़ी उम्र 59 साल तो घट है, तुसी फिजिकल और मैंटल डिसेबल हो तो गवर्नमेंट ऑफ कनेडा की जी 90,000 की ग्रांट है, बिल्कुल फ्री तुसी ले सकते हो। तुसी कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन करवानी सीधी, तो नंबर घुमा दो पंजाब इंश्योरेंस से 416-910-9000 416-910-9000 ते तुसी कॉल कर सकते हो रजिस्टर्ड डिसबिलिटी सेविंग्स प्लैन वास्ते, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनेडा वालों 90,000 की ग्रांट तुसी ले सकते हो बिल्कुल फ्री। सो नंबर टू कॉल 416-910-9000 416-910-9000 ते कॉल की जा सकती है। थानू फर्स्ट सैकेंड थर्ड मॉर्गेज चाहिए है, कंस्ट्रक्शन के लोन चाहिए, हैवीक्यूमेंट लोन चाहिए ने, थानू तो नाम है अकाल मॉर्गेज तो, जो कि मॉर्गेज जो एजेंट ने इंडिपेंडेंट ओन्ड ऑपरेटर गगनदीप सिंह ढिल्लों। फर्स्ट सैकेंड मॉर्गेज रिन्यूअल आ गई है, रीफाइनेंसिंग है, डेट कंसोलीडेशन थोड़ी चाहिए ने, लाइन ऑफ क्यूटी चाहिए है, रेनोवेशन कोई भी थोड़ा लोन चाहिए ने इनवेस्टमेंट्स लिए न्यू कमरों कनेडा दे विच, तो तुसी कॉल करनी है अकाल मॉर्गेज से गगनदीप सिंह ढिल्लों, उन्होंने नंबर है 905-226-9919 905-226-9119 भी कॉल कर सकते हो। प्रोग्राम नू कवरेज मास्टर .ca वालों भी स्पॉन्सर किया जा रहा है। कवरेज मास्टर .ca का संदेश है, ध्यान सुनो, अगर तुम अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवानी है, क्रिटिकल डिसबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ डेंटल ट्रैवल सुपर वीज़ा विजिटर वीज़ा ग्रुप बेनीफिट्स RSP TFSA ये सारिया सेवावां लैण वास्ते सैल्फ इंप्लॉयमेंट हो तो तुम कॉल करो 416-427-6565 416-427-6565 से कॉल की जा सकती है। पर उन्होंने अगे तोरीए सुनो ये गीत, कॉल करो, मैसेज थोड़े दो पहुँचे ने, टैक्स मैसेज बाई जसवीर होनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, कहते जी तुम बड़ा वधिया कर रहे हो, बहुत चंगी गल है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नाल उन्होंने भी प्रणाम किया शहीदा नूं, तो इस तरह बाई जे बिट्टा सवाल स्कार तो वह भी मैसेज भेज रहे हैं, तुम भी कॉल कर सकते हो सानू, नंबर है स्टूडियो 905-673-3337 जां मेरे नंबर पर 416-662-1313 कित भी तुम खब्यो सज्जो आ रहे हो, ट्रैफिक कि विघन देखते हो सू दस सकते हो किस तरह का बार है, तो सू सारू जो भी इस समय साढ़े भैन भाई ट्रक ड्राइवर चला रहे हैं, जो ड्राइविंग कर रहे हैं कार ऊबर लिफ्ट वगैरह कैब, सो थोड़ा सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। पर सुनते हो तुम बड़े वधिया तरीके नाल, ते कॉल भी तो सू करते रहते हो, सो थोड़ा सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। सो लो सुनिए ये गीत।

0: ॐ परात्पराय नमः ॐ वनमालिने नमः ॐ यज्ञरूपाय नमः ॐ चक्रपाणये नमः ॐ गदाधराय नमः ॐ कुबेराय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नमः
1: अस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य योगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजं सूर्यगुं शक्ति

नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादि

0: भूतः तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः ज्ञानमो सर्वा कुकुमाङ्क चतुर्भुजान् कदापाणि
1: स्मरति गल् करण लगे दिल कर रहे हैं ताही ना सिद्ध करण लगे।

0: सामान भी मिलेगा। 13 Allini Drive, 10 Brampton, टेलीफोन 905-799-9400।
1: अनामिकाभ्याम नमः। ॐ रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद, और आपके लिए और बड़ा मौसम बहुत अच्छा है तो आप एंजॉय कीजिएगा। अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, टीवी बढ़िया क्वालिटी का लेना है, किचन की गैजेट्स एडवांस बढ़िया क्वालिटी की, और आउटडोर फर्नीचर और बारबेक्यू चाहिए, तो आप जाइए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, फादर्स डे के लिए शॉपिंग करिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर, और फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-7099-0045-799-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-7099-0045। तो अब अगर आपने सोने के गहने, सोने की बार्स, शादी एनिवर्सरी बर्थडे ब्राइडल सेट चाहिए, डिजिटल गहने चाहिए, डायमंड अप टू 70% ऑफ चाहिए, फादर्स डे के लिए गिफ्ट चाहिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टन में मौजूद है, वहाँ पे जाइए, स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। और जानकारी के लिए आप अल मदीना ज्वेलर्स को 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए 647-773-7640। और मैं पहले ही कह दूं कि अगर आप इतना अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो बहन भाई हमें मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, सुनते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आइए अब जब प्यार गर्दिश में आ जाता है तो फिर इस तरह की गाने निकलती हैं।

0: जन्म से साथ तेरे बना हूँ मेरा जल की धारा।
1: जी हाँ, क्या बात है, मेरा नाम जल की धारा है, प्यार से कंपेयर कर लिया जल की धारा के साथ, तो आइए इसी जल की धारा के साथ बहते बहते आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाते हैं, मनोरंजन करते हैं आपका। जी हाँ, तो जो पहले वाले गाने, पुराने वाले गाने थे, उनका अंदाज अपना था, पर उनकी जो कोरियोग्राफी थी कमाल की थी। और पुरानी फिल्मों में आपको नजर आते हैं कि घर कैसे होते थे, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनके स्टाइल, लाइफस्टाइल, बहुत कुछ आपको देखने को उसमें, सिर्फ गाना ही नहीं मिलता है, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती, क्योंकि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस तो वो फैशन वाले ही कपड़े पहनती थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेके, आप तो मज़ा लीजिएगा। सो अगर आप मूव हो रहे हो तो आपके लिए मदद करते हैं एचके मूवर्स कनाडा भर में, और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-4567-04 एचके मूवर्स। तो अपने घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो किचनर वाटरलू गल्फ में आप नसीब खेल को कॉल कीजिए 519-546-1260-519-546-1260। और न्यू इंडिया स्वीट्स है, रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। लाइव कुकिंग करवानी है, आपने किसी तरह का भी खाना ऑर्डर करना है, तो आप उनको कॉल कीजिए 905-814-1703-905-814-1730। तो अब मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में, अब आपके लिए लोकेटेड है। तो आपने किसी किस्म की भी, आपको लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो, आपको कोलिजन का काम करवाना है, तो आप mastercollisiondepot.com पर जा सकते हो। तो गोर रोड लंदन में उनका गैराज है, तो आप वहाँ पे जाके उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए रिची, आपके लिए बढ़िया सा, आपके लिए सेवाएं देते हैं। तो आप रिची को कॉल कीजिएगा, और mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेना है, या फिर आपने किसी किस्म की भी, आपको आपने नया टीवी लेना है, किचन की गैजेट्स, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यूज, न्यू स्टाइल बारबेक्यूज, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट में मौजूद है। तो उनकी दो लोकेशन है आपके लिए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड, दूसरी लोकेशन ग्वालकने। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी फादर्स डे स्पेशल देखिए, और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिए फादर्स डे के लिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। ये ससुराल फिल्म था, महमूद के ऊपर फिल्माया गया था। तो

पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो हम दूर रहे। पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे।

महमूद के साथ उनकी हीरोइन बन के आती थी शोभा कोटे, तो बहुत था म्यूजिक वैसा। तो आइए इसी तरह आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनाते रहेंगे। और किसी किस्म की आपको तो ये जो गाना है ये भी आपके लिए पुराना सा गाना है, फिर आपको नए दौर में भी ले आएंगे। तो ये जो गाना है So let's go to this beautiful song, enjoy.

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप अगर आपको किसी तरह का उसका भी कोलिजन का काम करवाना है तो लंदन तो आपके लिए लंदन में मास्टर कोलिजन डिपो मौजूद है वो रोड पे, और वहाँ पे आप जा सकते हो और अपना कोलिजन का काम करवा सकते हो। बहुत सालों का उनका तजर्बा है, तो masterkollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। अब आपका जो समर है, आप बता सकते हो कि कैसे गुजर रहा है, क्या कर रहे हो, तो आप जरूर जरूर आप बता सकते हो, तो हमें आपके बहुत सारे लोगों की अतियादे मिले हो रहे हैं बहुत सारे, और फिर आपके लिए बहुत सारे पिकनिक्स हो रही हैं, बहुत सारी कंपनीज पिकनिक हो रही हैं, बहुत सारी कम्युनिटी पिकनिक्स हो रही, तो कुछ ना कुछ आपके लिए बाहर घर से निकलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, दूसरे लोगों के साथ टाइम बिताने के लिए अगर आप निकल सकते हो तो आप आइएगा। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल। रोशन फिल्म

0: पिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज स्टोव वाशर लेना है, कभी भी आपको अपने घर के लिए किचनेट सेट करवानी है, ऑफसाइड बारबेक्यू और टोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड, बढ़िया प्राइस, बढ़िया क्वालिटी, तो टॉप चार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। टॉप चार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है, दूसरी लोकेशन को आपने। और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको
2: $10,000 in Canada on things like credit cards, payday loans or lines of credit, are your month?
1: So अब आपने किसी किस्म का भी आपको आपने आपको घर खरीदना है तो आप जाइएगा, आपको मदद करेंगे खुशवासी ब्रांच 416-670-1313। आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए तो कनाडा भर में मूव होने की मदद करते हैं, तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से मूव करवाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए और अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4416-527-04। तो अभी तक अगर आपने अपना टैक्स नहीं भरा है तो गुड प्लीज रोडे को आप कॉल कर लीजिए, पर्सनल या बिजनेस 416-302-8834-16-302-8135। सो लेट्स गो टू दिस।

0: तुम्हें हजारों तूफान आता नहीं है।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सर में। ये गाना आप जरूर देखिएगा, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो महमूद सुबह खोटे को बड़ी सुंदर है, सुबह खोटे इसमें बड़ी यंग है। तो उसको कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो, वो उसको ऐसे इशारे से कहता है, तो वो कहती है नहीं। फिर वो जब सिर हिलाती रहती है तो फिर वो ना ना में सिर हिलाना शुरू कर देता है, तो फिर वो हाँ हाँ में सिर हिलाना शुरू कर देती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं हाँ कर रही हूँ। तो बड़ी मजेदार पुरानी मूवीज है, बड़ा बड़ा फनी है, बहुत ही मजेदार है। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। जिनके बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं और अभी ग्रेजुएशन होनी है बच्चों की 8th grade की और बाकी के ग्रेड की, तो फिर को मैं बहुत देती हूँ। तो अब इस गाने के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका एक बार फिर से प्रोग्राम को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपना टाइम निकालते हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब आप ये प्रोग्राम सुनते हो तो आपको बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए जाएं, ताकि आपकी रूह को के लिए फीलिंग हो और आपको अच्छा लगे जो है आप सुनते हो, तो आपको बहुत बड़ी ये गीत पेश कर रहे हैं, तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा इस गीत को। तो लेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग तो
2: आप

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

और नाल दी नाल तुसी ऑल वे रूफर्स नूं याद रखो, जे तुसी अपने घर दी कमर्शियल यूनिट दी रूफ फिक्स करवानी है, छत्तां फिक्स करवानियां, छत्तां ठीक करवानियां, तां मौसम बहुत वधिया खुल गया, धुप्पां लगन लग गईआं, ऑल वे रूफर्स नूं याद रखो, फ्लैट रूफ, सिंगल रूफ या कमर्शियल मैटर रूफ, चाहे तुसी फ्लैट होवे तां वी तुसी कॉल कर लैणी है। 15 सालों का भाई उन्हां नूं तजर्बा आ, GTA ते GTA तों बाहर सेवावां दिंदे ने, किचनर, कैम्ब्रिज, लंडन, गल्फ, हैमिल्टन, बैरी, जॉर्ज टाउन, तुसी कॉल कर लैणी है ऑल वे रूफर्स नूं अपनी रूफ फिक्स कराउण दे लई या नवीं लवाउण दे लई। 647-0943-647-750-0943 ऑल वे रूफर्स नाल थोड़ी गलबात हो सकती है। और एक बार फिर साडा राबता जुड़ गया है, आई थिंक साडा कनैक्शन टुट गया है, दोबारा गल करन दी कोशिश करदे हां। रमेश हुशियारपुर जी हुण नाल जुड़न दी कोशिश करांगे। सो 905-673-3337 905-673-3337 रमेश जी हुण नाल राबता करन दी कोशिश करदे हां।

0: This program is a proud member of the Canadian Punjabi Broadcasters Association, CPBA.
1: विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कॉन्टैक्ट करो 647-400-88 62।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walon paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikkiyan nikkiyan kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6947400188 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक तनिगा स्वागत। उम्मीद करदा कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। जिहड़े दोस्त साडे नाल हुणे जुड़े ने जी, उन्हां नूं भी निक्की जिहा आखदे आ, क्योंकि अपना साथ हर एतवार वाले दिन 12 बजे रामस पंजाबी वीकन शो दे नाल बन जांदा है। 12 to 1 सुणदे हो रामस पंजाबी, ते 1 to 2 सुणिया जांदा प्रोग्राम नजरिया। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल। कोई भी गलबात तुसीं प्रोग्राम तों बाद विच मेरे नाल करनी हुंदी आ ते 416-669-1379 ते कर सकदे हो 416-669-1379। अदरवाइज स्टूडियो कॉल करने वास्ते टैलीफोन नंबर होंगे ने जी 416-233-7368 या 8297 416-233-7368 या फिर 8297 ते अपनी गलबात हमेशा ही हो सकती होंगी है। कितने ट्रैफिक के रुकावट भी देखते हो तो तद भी तुम इन नंबर से कॉल कर सकते हो। कोई इनफॉर्मेशन साझी करनी हो अपने दोस्तों मित्रों के नाल तो फिर मैनू तुम टैक्सट भी भेज सकते हो 416-669-1379 टैलीफोन नंबर दे उते। और साड़ी गलबात का यह सिलसिला जिहड़ा तुहाडे तक पहुँचाउंदे वे सानू मदद ऑप्टिकल वन वाले करदे ने 905-455-0752 उहनां दा टैलीफोन नंबर है। फास्ट फाइड पिज़्ज़ा तो सानू सपोर्ट मिलती है 205 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ते लोकेटेड ने 905-595-55 टैलीफोन नंबर है 9055-00-9555 ते कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। बड़ी जल्दी कोशिश होएगी साड़ी कि तुहानू लाइव उत्थों जरूर जोड़िए कि कुछ स्पैशल अज जिहड़ा फास्ट फाइड पिज़्ज़ा ते चलदा। अदरवाइज तुसीं कॉल करके जरूर पता कर लिओ 9055-00-9555 टैलीफोन नंबर है। फास्ट फाइड पिज़्ज़ा 205 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन दे विच लोकेटेड ने। पंजाबी बाय नेचर 416-937-2061 टैलीफोन नंबर है। ली बैंकट हॉल 416-238-8154 416-238-8154 उन्हां दा टैलीफोन नंबर है। एयरपोर्ट निसान 905-791-9900 ते संपर्क हो सकता है। ट्राई सिटी प्रोफेशनल रियल्टी ब्रोकरेज तों अवतार सिंह जी बडियाल 416-464-2067 ते गल हो सकती है। किंग टोइंग 416-677-2222 टैलीफोन नंबर है। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-688-1200 ते संपर्क किया जा सकता है। ड्रीम होम अपलायंसिस 905-805-3000 ते गल की जा सकती है। प्रीमियम आटो रिपेयर एंड यूज कार सेल्स तो गुरप्रीत अड्डा जी 416-747-6800 ते गल कर लेनी। गिल स्वीट फैक्टरी 905-799-2616 6 लोकेशनस ने जी पूरे कैनेडा भर के 4 साढ़े इतने जी टी ए दे विच ते 2 कैलगरी दे विच ने। हैड ऑफिस कॉल करके जानकारी लै सकते हो 905-799-2616 टैलीफोन नंबर है जी। और वर्ल्ड वाइड पासपोर्ट सर्विसिज एंड पासपोर्ट वीज़ा एंड एन आर आई सर्विसिज तो दुपेंद्र लूंबा जी 647-402-2202 ते उन्हां दे नाल संपर्क किया जा सकता है। द रॉयल सिटी कंस्ट्रक्शन तो अजय सिंह जी 437-766-5158 ते तुसीं गल कर लैनी 4377-665-1588। और वंस अगेन अज तुसीं नगर कीर्तन दे विच अगर शामिल होए हो जां शामिल होण जा रहे हो ते तुहाडे वास्ते शुभ अशावां जी अज दे दिन दे लई।

ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ। कल्चर ऑफ पंजाब आपको एंटरटेन भी करता है और आपको बिजनेस भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे तो इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बन जाइए। देव तातला को 416-677-0609 दैट्स 416-677-0609 पर कॉल करें और स्पेशल प्रमोशंस का फायदा उठाइए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले शोज में आपका बिजनेस भी शामिल हो। कल्चर ऑफ पंजाब बाय देव तातला।

तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसकी आंखों के नशे में हम जब से डूबे, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पे आंखों से फिसल जाते हैं। प्यार में एक ही मौसम है बहारों का, पर कभी कभार यूं ही ख्याल आता है कि लोग मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं।

सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है। दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले उसे।

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? देव तातले नू कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदि हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते, कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद। व्हिच यू विल लिसन इन योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब, ब्रॉट टू यू बाय देवदातला।

0: ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरे नबजी, मेरा बिजनेस नीचे चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਵ ਤਾਤਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਐਡ ਚਲਾ, ਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫੋਨ ਕਰ 416-677-0609 416-677-0609।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: You are listening to Culture of Punjab. For exciting advertising packages, call 416-677-0609. 416-677-0609.

0: 32 55 80
1: 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

Well, इसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यही खत्म करने की इजाजत दें. बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यही खत्म करने की इजाजत दें. बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609. With that, I sign off. She'll see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM
1: 530.
2: 32, 55, 80.
1: 98. 1. गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: हो काउंटिंग नहीं. ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने.
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने. इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे. हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते.
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने.
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी. कॉल 905-450-2828. 905-450-2828.
4: Wakey, wakey, wakey, wakey.
5: It's wake up time. It's wake up time.
4: Now is the time to wake up.
0: Crank up the radio. You're listening to the Dave Todless Show, brought to you in part by Culture.

0: आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टॉलर शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादी उम्मीद करते हैं तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी कि अगले एक घंटे में तुहाडे ढेर सारे डालर की बचत करके दईए। सब तो पहला सुल्तान जी का धन्नवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम टू द शो सर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सुल्तान जी ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस ते बहुत लंबे और किन्ने फरे हो गए इस काम च?
1: 39 ईयर।
0: लो जी ऑलमोस्ट 40 साल का इस बिजनेस च। जिहड़ा पुराना बंदा हुंदा उहनूं इक तां नॉलेज पूरी हुंदी आ, इन एंड आउट दी पूरी नॉलेज आ। जिहड़े सेल्समैन रखणे आ, किहड़े रखणे आ, किहनां नूं किहड़ी ट्रेनिंग देणी आ, हर एक शै इहनां नूं पता है। लेकिन अज असीं उस बारे नहीं गल करनी, अज एक्सपीरियंस 40 साल का हैगा, अज गल करनी आ टेलीविजन टेलीविजन ते टेलीविजन टेलीविजन ते।
1: ओदी रीजन इह आ जी कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा ते फीफा वर्ल्ड कप दे विच सैमसंग ने स्पोंसर कीता ते सैमसंग चाहुंदा कि मैक्सिमम बिग स्क्रीन टीवियां ते असीं डिस्काउंट करिए ताकि कस्टमर्स जिहड़े आ वड्डी स्क्रीन ते अपने घरां च बैठ के मैच देख सकन। और इहदे च एडवांटेज इह दित्ता जा रहा कि कोई 200 या 300 या 400 नहीं जी, 600 तो लग के $800 का डिस्काउंट है जे 85 इंच तक टीवी लेंदे हो।
0: अच्छा
1: जे टीवी लेंदे जी 98 इंच या 100 इंच या 115 इंच ते ओदे च तकरीबन मोर देन $1,000 का डिस्काउंट है जेड़ा एस टाइम दिता जा रहा। जो मैं कैलकुलेट करदा 40% का डिस्काउंट बन जाता, समवेयर इट्स मोर देन 40%। 85 इंच का QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसैसर के नाल 85 इंच QLED हाई एंड टेक्नोलॉजी है, क्लीयर क्रिस्टल पिक्चर क्वालिटी है। $2,000 वाला 1299 सैमसंग ने 1299 एक्सक्लूसिव डील दिती है बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस नू। ब्रैम्पटन अपलायंसिस .com साडी वैबसाइट तो तुसी डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी लै सकदे ते वॉक इन कस्टमर लई एडिशनल गिफ्ट्स जिहड़े आ उह भी तुहाडा वेट कर रहे हैं। बिल्कुल 4 to 5 टीवी इन स्टॉक रह गए होंगे, जल्दी क्विक एक्ट करना है तुसी। बिग स्क्रीन टीवी नू जे होल्ड करना है मैक्सिमम डिस्काउंट दे नाल 1299 दा, अदरवाइज $1,800 तो घट अगे जाके टीवी नहीं मिलना।
0: 1299 दा टेलीविजन ले लो, 6 महीने पैसे देने की लोड़ नहीं, कोई ब्याज कोई इंटरस्ट नहीं लगना। जिस दिन तुसी टेलीविजन लेके गए घरे उस दिन तो यह पेमेंट सिस्टम चलना है। सो 6 महीने 1 सेंट देने की लोड़ नहीं।
1: ते कदी सोचिया होएगा कि 55 इंच टीवी तुहानू सिर्फ $399 ਦਾ ਮਿਲੇ?
0: ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
1: $800 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਵੀ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 399 ਚ 55 ਇੰਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 65 ਇੰਚ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ $699 ਦਾ ਮਿਲੇ, ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਵੀ $1,000 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, $699 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਟਾਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, $1,000 $900 ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ 65 ਇੰਚ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 699 ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ 699 ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੇ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ $3,000 तक की भी शॉपिंग करो ना,
0: हाँ जी, हाँ,
1: $500 महीना करके पे कर दो, 3,000 पूरे हो गए।
0: सो जिन्हें भी शॉपिंग करे थोड़े थोड़े करके देने, वो दे दो कट्ठे देने, वो तुम्हारी इच्छा है, कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे महीने महीने दो चाहे 6 महीने च दे दो।
1: ईवन $2,400 तक की भी शॉपिंग करो, $400 महीना करके दे दो, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए तो क्या कि बिग स्क्रीन टीवी $3,500 वाला 98 इंच,
0: हाँ जी,
1: देखो किन्ने कंज्यूमर दी आम बजट च आ गया। $3,500 तो सिर्फ $1,999 का,
0: हाँ जी,
1: तो $1,999 भी 6 महीने च पे करना, थोड़े थोड़े करके पे कर दो।
0: सो बड़ा इजी इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है। तुसी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी अपलायंस चक्कर लाओ, हाथ लागे दे लो। जेडे टीवी या टेलीविजन तुसी दस रहे हो ये ऑलरेडी उते डिस्प्ले ते हैगे,
1: डिस्प्ले ते भी है जी, और राइट वे स्टॉक च भी अवेलेबल है। 48 आवर च तुहाडी डिलीवरी स्केड्यूल हो जाएगी, बिल्कुल फ्री डिलीवरी है। बल्कि साडियां डिलीवरियां जेडियां हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक, नियाग्रा फॉल, वेलेंड एरिए ऑलरेडी जा रही है। अगर तुसी राइट वे डिसीजन लेंदे हो तो तुहानू 48 आवर च डिलीवरी जेड़ी है इस एंड ते भी मिल जाएगी। ईवन क्योंकि हैमिल्टन आले पासे भी जाना है, तो मिल्टन ਤੇ ਓਕਵਿਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਕਵਿਲ, ਮਿਲਟਨ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ, ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ, ਵੈਲੈਂਡ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 905-450-2828 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, ਇਹ ਵਨ ਵਰਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਆਈਟਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ।
0: ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਅਪਲਾਈਂਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਬਚਤ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ, 801 ਬੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ, ਜਸਟ ਈਸਟ ਆਫ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਔਨ ਬੋਵੇਡ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 905-450-2828, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ .com। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 905-450-2828, 905-450-2828।